निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत

0: भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्य सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलम माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यंतरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्टिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्ने 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଶୁଭ ସକାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କାଟାକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा

0: मरे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम पहली जुलाई से प्रभावी हो

0: जाएंगी। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic

आकाशवाणी एफएम रे रेनबो काटिक दिल सही दिल तक रे पूर्णी सो स्टार्ट करिबा मॉर्निंग मेलोडी रा ए मॉर्निंग को आउट के मेलोडियस करिबा आउट टिके रंगारंग करिबा जेहेतु आज संडे अछि आपण माने टिके भी फ्री रे थिबे कारण वर्किंग डे अपेक्षा हॉलीडेज रे प्रायतः आम समस्ते टिके रिलैक्स मोड रे थाउ टिके फ्री थाउ कारण टाइमली आम कौटि हमर पहुंची पार न थाए आमे आम प्लान आमे निजे बनई थाउ सेतपई आमे टिके रिलैक्स मोड रे थाउ खाली सेतिके नुहे सबो बेले खुशी मिजाज रे काम करबा कथा पॉजिटिव थॉट्स रे काम करबा कथा काहेकि कहिले आमे जदि अधिक चिड़चिड़ हबा रागी जिबा कथा कथा रे विरक्ति हबा सबो बेले एकदम टेंशन मोड रे रहिबा ताहाले आमर ब्लड प्रेशर लेवल सबो बेले अधिक रहिबो यादारा आमे माने ही रोगग्रस्त हवा हैरान हवा देहपा खराब हवा सब बेले गोटे अलग टेंशन आमे रहिबा एमती जमा करिबानी अधिक हाइपरटेंशन ने जमा केही भी आमे रहिबानी सब बेले रिलैक्स मोड रे काम करिबा सब बेले भाबे आमे जोटा करूचे तार निश्चित किछ ना किछ भलो प्रभाव रहिछि भलो काम करिबा पई चेष्टा करिबा टिके योगा मेडिटेशन करिबा आउ किछि समय हल्का फुल्का भावरे बाहर बुलाबुली करिबा बा ता सहित भल भल गीत सुनिबा निज मन पसंद रो गीत सुनिबा ए सब जति आमे करिबा ताहाले आमे टिके फ्री मोड रे बा रिलैक्सेशन रे रहि परिबा एमति जति आमे रहिबा रोग न हले त आमे इजीली बंची परिबा बहुत दिन रोग ही समस्या रो कारण मु चाहिबे आपण माने निरोग रहंतु सुस्थ रहंतु सब बेले हसी हसी जीवन को जियंतु

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

ट्यून करेछेन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक किछि किछि छोट छोट धाड़ी बा किछि शब्द को सुनी ताको खने खने हे उच्चारण करबा पई दरोटी कथा बा अधा अधा कथा कह जाय जो कथा केवल छोट पिलाटी ही कहिथाय आ से कथा सुनिबा पई भारी भल लागे भारी मीठा लागे।

0: म्यूजिकली ओर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक दिल से दिल तक चली डाइलिन लाइव चिटचाट शो जो शो रे आपण माने निज मनर कथा हृदय कथा आम सहित सीधासळख भाव रे शेयर करंती। तबे आज टॉपिक टी रही आम परंपरा रे पालन करायोथिबा पर्व पर्वणी भितरु आपनकु केउटी बेसी पसंद आउ काहेकि ए संपर्क रे सुंदर सुंदर मत आपण माने शेयर करूछंती। एबे देखिबा नेक्स्ट कॉलर किए। हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
1: हेलो मैम नमस्कार। जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार जय जगन्नाथ किए कहउछंती?
1: मैम प्रफुल्ल प्रधान कहउतली कुहारपाल माणिया बंध।
0: आपणको स्वागत जणउछि। कोन कहिबे आपणकर केउटी सबुठ बेसी प्रिय?
1: मैम देखंतु सबु त विभिन्न प्रकार पर्व अछि हम 12 मास रे 13 पर्व आमे जानिछे। तेणुकरी एरिया नहीं पर्व भल आमको जो भल लगे आम एरिया भी से पर्व ना आम गीतर दशहरा रज दोल पूर्णिमा मुख्य पर्व तेणुक एरिया नहीं पर्व हम गोटे काली पूजा तेणु काली पूजा मत बेस भल लगे कि आम एरिया ना दूर अच्छी तेणु पर्व जेझा एरिया पर्व जेझा को भल कि मत प्राय सब पर्व भल लगे कि बेस्ट लगे रजटा टे समेत सांगसाथी बुलाबूली करू किसी गले कबाडी खेल हुए डुडू खेल हुए आम दोली खेल हुए से बेस्ट भल लगे आ गोटे हूँ दोल दोल तो सब घर को छुट्टी आसती सांगसाथी जिते चाकरी बाकी कर सब छुट्टी आसती सहित जो मिशि जाऊ सी आउ गोटे अलग निरा परंपरार सृष्टि हो जाए मन भितर तेणु कौ पर्व को निंदी हमी मैम सब भल कि आम एरिया जो आम निश्चय से भल कह
0: अच्छा
1: गोटे रात हूँ रथ जात आम सारा ओडा जगह तो आपको पालन करम पाखे पालन है भल कह दूर तो पालन हम तो पालन पारि पारे आम एरिया जो जेकोसी पर्व हूँ आम खुशी सह पालन करवा मन आंतरिक सह पालन कले भल लगे
0: सब
1: पर्व ही भल कौन पुण्य पर्व को निंदर ना
0: अच्छा आपण सब पर्व को एमती भल पाउ थांतु आउ रज पर्व दोल पर्व को बेसी मनाउ थांतु हम सहित शामिल हेले आपनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: सब पर्व पर्वाणी रो नियारा गोटे भावना थाए नियारा वेशभूषा कहंतु खाद्यपेय कहंतु प्रस्तुति प्रणाली था सब पर्वपर्वाणी अलग अलग प्रकार थाए आ सब पर्वपर्वाणी विभिन्न प्रकार टाइम रे ही होई थाए। देखो दशहरा बेसी खरा न थाए कि बेसी शीत न थाए आ दोल पर्व सेमती रज खरा जस्ट सरी सरी आसुए तो कही हेनी गुड़गुड़ी थाए गरम थाए किंतु से जो मौसुमी आगमन से मौसुमी आगमन पर्व रज पर्व एटा हूँ कृषि भित्तिक पर्व आम समस्त को बेस भल लगे आ रज तीन दिन कहार किसी भी काम न थाए सब कम बारण कर बंद करवल आम हसवा बुलवा खेल नाचवा यह सबुरी आम कटि थाए से रज पर्व एक निरा पर्व सेमती प्रत्येक पर्वपर्वाणी खानापिना पाखर आरंभ कर वेशभूषा सब जिनसर स्वतंत्र ढंग रंग सबकि थाए से सब पर्वपर्वाणी आमको बेस भल लगे ता भीतर मध्य आमर फेवरेट किछि भी थाए आज आम से कथा विषय आलोचना करूचे। एवं देखा आउ जे कलर आम सहित जोड़ी गल से किए हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
2: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: हाँ किए कहते

0: म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक चली डाइलिन लाइव चिटचाट आप सीधा सड़ख आम सहित कथा होती आज टॉपिक रही आम परंपर में पालन करवाणी भितर आपण को क्यों बे पसंद आहिकी कलर को हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक
1: नमस्कार किशनोर कटक दीपक दास कहते
0: आपको स्वागत जनाऊे कहत टॉपिक संपर्क
1: धन्यवाद आज्ञा देखु कथा अच्छी तो बार मस तेर पर्व कि पूर्व कहते शुणी तेर पर्व तो नुह चौबीस पर्व भी नुह मुझे जानवे बहुत किसी मैंने तीन सौ पंसठ दिन बोध तीन सौ पंसठ दिन छोटे बड़े किसी ना कि पर्व थब ओषा व्रत पर्व एम कि ना कि थब
0: ए
1: तेज एक दिनात्मक पर्व ठार्वी किसी अधिक दिन हुए जो पर्व कि साधारण भाव स्कूल पिला आरंभ कर कार्यालय जमीती की सरकारी बेसरकारी किसी अनुष्ठान बंद थाए तेज से पर्व समस्ते सामिल हमें से पर्व निश्चित भल लगे जमीक सब विभिन्न विभिन्न कलर सब कहते जहाँ भी जमीक दशहरा गोटे बड़ छुट्टी भितर पर्व टी पालन हुए तेणु समस्ते छोट ठू आबल वृद्ध मैंने समस्त सामिल हो पारती समस्त छुट्टी भी थाए समे सामिल हमें सेमती की रज है रज से जहाँ भी आपड़ कहते ये खरा टी सरी थाए वर्षा टी आरंभ हो थाए आ समय सब विभिन्न परीक्षा सब पिला सरी जाए थाए विभिन्न कार्यालय भी छुट्टी थाए सब एकाठी हमारे गोटे प्रकृष्ट गोटे मान गोटे मध्यम थाए तेनाली भल लगे सागे समस्त पिठा दोली समस्त मिशिवार जो एक अपूर्व आनंद देखिए बहुत कलर भी कहते सुगुंडीजा सुगुंडीजा दिन एक दिनात्मक सारा विश्वर भक्त कोण अनुकोण छुट्टी आसती से दिन टू केवल जगन्नाथ जिते बड़े मानने आम मान को दर्शन देवाई श्रीमंदिर बाहरी आसती सामिल होगा परम सौभाग्यर कथा निश्चित बहुत आनंद दिए कारण केवल से ही दिन नुहे से पूरा बाहुड़ा पर्यटन बाहुड़ा पर नीलाद्री विजय पर्यटन प्रत्येक जो घटना जहाँ भी अच्छी परंपरा से निश्चित भाव बहुत भल लगे आम जीतने सामिल हूँ भल लगे ना आम जब प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में जब आम किसी दूरदर्शन कि बहुत आनंद लगे
0: वाह पर्व पर्वाणी को छाड़ी आम बंची पार्वानी कि रही पार्वानी से सामिल हवा और निज को मध्य आनंदमय मन करवा नहीं कि बहुत भल लगे आप कथा ये सुंदर भाव में पर्व पर्वाणी को वर्णना कले बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद नमस्कार
0: नमस्कार पर्वपर्वाणी कौन गोटे खाना पीना गोटे बुलाबूली भल टे नुआ नुआ ड्रेस फेस पिंधा टिके बंधु बांधव घर को कथबार्ता टे हवा ये तो कौन खुशीवासी प्रकृत खुशीवासी को आम समस्ते भल पाऊ से तो मुझे अजथा कथार मुंड पुरातु ना टेनसन हूं ना मानसिक भाव चापग्रस्त बेसी हूं ना जेकोसी कम हो स्मुथली इजिली हैंडल करने चेष्टा करूँ पॉजिटिव वे रे सब बेले रुहंतु जेकोसी बाधा विघ्न रोग शोक दुख जहाँ भी आसू से सबको केमती सुंदर भाव समाधान करें से सबुर गोटे सुंदर सूत्र बाहर करूँ आप सुस्थ रुहंतु निरोग रुहंतु सब बेले हस खुशी समय काटि दिंतु आ मुझे आज पर्वपर्वाणी कथ डिस्कशन करुच्ची आपके रिलैक्स मोड रही पारे जेहेतु आज संडे अच्छे पर्वपर्वाणी आम बेस खुशी मनाऊ आनंद मनई था समस्त भितर गोटे सुंदर भावना सृष्टि हुए रजरे जमती पिठापणा या हुए रज पान रज दोली ए सब मजा थाए सेमती अन्न्य पर्वपर्वाणी विभिन्न प्रकार खावा पीबार मजा बुलाबूली मजा नुआ ड्रेस पिंधार मजा ए सब आम को गोटे सकारात्मक भावना भितर को टाणी आने देखा आम आउ जन कलर जोड़ी हो गले से किए हेलो

0: मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7 अरब $75 करोड़ का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $2.8 अरब से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर ₹80.09, गाजियाबाद और नोएडा में ₹88.70 और गुरुग्राम में ₹85.12 हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में ₹2 की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडु में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will reach Kathmandu.

0: Lindbergh today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in India-Sweden relations. He will hold bilateral talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111.
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ. साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है. इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं, उसका उल्लेख किया है. आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है.
3: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले. यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है. यह हमारी पवन शक्ति है. हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही, वायुर्वै समष्टि है. अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है. साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है. भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है. पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है. विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है. साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है. यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है. साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे. गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं. इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं. साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है. ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है. इसमें हम सबकी भूमिका है. हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है. देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है.
2: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को. आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रबीर कुमार दास. आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं. डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में.
4: धन्यवाद. धन्यवाद.
2: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी. आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी.
5: धन्यवाद.
2: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं. लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं? पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है? और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे.
4: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे.
2: जी,
4: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है. और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने हैं. अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम

0: हिले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं, और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रतिक्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
0: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं, तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं, और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
2: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहां से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो है उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है, और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया, और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MENS किया, और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
2: पवन ऊर्जा का जल्दी फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी,
2: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता है, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपए का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था, और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था, फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
2: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी,
2: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी,
2: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
2: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
2: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा।

0: इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी।
1: जी, तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
0: आई थिंक मेरे हिसाब से ये हवा के साथ साथ।
1: जी, हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग,
3: संभलना।
2: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के बनाते हैं
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बताए उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के अंदर जो स्टार्टर है या रोटर है उसी को घुमाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। वो पंखा जब घूमता है तो वही घुमावट का जो शक्ति है वो जनरेटर में जाता है और जनरेटर से बिजली पैदा होता है, फिर वही बिजली को फिर हम ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर वही शक्ति हमारा घर पे बिजली बन के हमारा जो आमतौर के जिंदगी में हमारा डेली लाइफ में हमारे लिए, चाहे आपका लाइट हो, घर का पंखा हो, फ्रिज हो, टीवी हो,
0: जी,
1: वो हर जगह पे काम करता है।
0: जी, तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है।
0: जी,
1: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहां पे गवर्नमेंट से सहायता

0: जाती है, वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो। तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट। तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था, फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे, हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा। बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं, क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का, उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं।
1: जी,
0: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है, मंत्रालय के तरफ से हमारा चार, हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है। तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
1: जी,
0: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है
1: जी,
0: जो हमारे डिस्कॉम को, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है, कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी, या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है, जिसको हम पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सीवेट के नाम से शुरू हुआ था सन 2000 में। अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जो चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है, वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहाँ पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है। और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है, तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है, वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का, और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे, उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है।
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता,
1: जहाँ हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो, आसपास खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी।
0: जहाँ पे कंटिन्यूस विंड होता है, आप वहाँ पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं। तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी,
0: किसी भी
1: इंजीनियर्स हवा की दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: तो हम पवन की बातें करते हैं, तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी।
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी, सावन का महीना।
2: सावन का महीना पवन करे शोर।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ, हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक लगभग, जिसे कह सकते हैं कि 5

0: या 6 वर्ष के अंदर हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है, उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है। तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं
1: जी,
0: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है
1: जी।
0: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा
1: जी।
0: और हम जो है इसको और इसी विषय पे, इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया
1: जी।
0: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा
1: जी,
0: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के, उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थी, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। और शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं
1: जी। बिल्कुल, जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें। ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, कैसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है। ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं
1: जी।
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट
0: किया है और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी
1: जी।
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छे उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है
1: जी, उन्हें रोजगार मिलता है
0: इसकी वजह से। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है
1: जी।
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता 1-1.5 किलोमीटर का भी हो जाता है, तो रास्ते में कई उनको उद्यम जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है
1: जी।
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है
1: जी। हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रबीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्की अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स

0: प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए, तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना। बट हाँ, बिजली उत्पादन थोड़ी देर के लिए शायद बंद हो सकता है क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना।
0: जी,
1: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है।
0: जी,
1: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में, तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था।
0: जी,
1: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
0: जी,
1: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
0: जी।
1: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मॉनसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है
0: जी।
1: बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है, इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है। तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
0: जी।
1: अभी 1-2 स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहाँ पे भी शायद अगले 1-2 साल में आपको दिखेगा कि वहाँ पे भी लगा हुआ है
0: जी।
1: लग जाएगा।
0: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
1: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
0: जी।
1: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइट्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइट्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइट्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
0: जी।
1: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
0: जी।
1: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
0: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सर?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
0: जी।
1: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
0: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाएं?
1: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है, जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500

0: सौ वाट 200 वाट ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है, बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में है जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए, तो ये संभव है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं
1: जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, इसके बाद हमारी बातचीत जो है इसका सिलसिला जारी रहेगा।
0: आपने देश के बारे में पूछा है, पवन के बारे में पूछा है, तो पवन चले पुरबाई
1: जी।

गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, इससे हमारी जानकारी बढ़ रही है पवन ऊर्जा को लेकर। साथ ही कुछ तकनीकी पहलू भी एकदम आम शब्दों में, साधारण भाषा में हम समझ पा रहे हैं। पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप एक साइंटिस्ट भी हैं।

0: और साथ ही ओम तनेजा जी हमारे साथ हैं, उद्यमी हैं और भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से आप जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
1: ये एक संस्था है
0: जी,
1: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं, उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
0: जी।
1: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो है कंपोनेंट और ये सब है
0: जी,
1: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं। और

0: वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
0: मैं आपको जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो है कंपोनेंट और ये सब है
1: जी।
0: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी।
0: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
0: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
0: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक द्विधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
1: जी,
0: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
1: जी,
0: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है ताकि दोनों ही टर्बाइन्स का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
1: जी।
0: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती है वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है।
0: हाँ देखिए, हर टरबाइन जो है लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टर्बाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती
0: रहे। यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
0: कि जिस समय जैसे सुबह 8 से 7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है जो हमारी तारे हैं जो हमारे सब स्टेशन लगे हैं उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता
1: जी। आपसे जानना चाहूंगी प्रवीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाईलाइट्स हमको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
2: बिल्कुल, जैसे कि तनुजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
2: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
2: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
2: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये। जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड

0: के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी।
0: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं। अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
0: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
0: फिर वो लिस्ट बनती है तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं। तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी
0: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता है
1: जी,
0: तो वहां पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है
1: जी।
0: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहां पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं जहां पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है, तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है, तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं, समझने के लिए या रिसर्चर्स हैं
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए, उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता। मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हजार्ड। वो गिरेगा भी नहीं तो क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
0: तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी रहता है। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए उसको छुएं,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
1: जी।
0: कुछ पुराने टर्बाइन है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं। और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने की जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा, तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है, जिस पदार्थ से बनते हैं, उसका 85% मेटल्स होते हैं
1: जी।
0: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं और इसका कॉस्ट, इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है, तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके, और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन से है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहां पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड हो, और इनफैक्ट यूरोप में बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है, इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है, 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं, जिस रेजिन से वो बनता है कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जी लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है, लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है, तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट।

0: ऊर्जा का,
1: पवन ऊर्जा का होता
0: जी,
1: है। तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
0: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय की अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
0: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्काउंट अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते
0: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो है वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। तो चलते चलते ओम जी आपकी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं के लिए।
2: पंछी नदिया पवन के झोंके
0: जी,
2: ये एक अच्छा गाना हो सकता है।
0: बिल्कुल, ये गाना बहुत अच्छा है, हमारे कार्यक्रम की थीम से मैच कर रहा है। पवन के झोंके जो है बहुत ही जादू का काम यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्य प्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
0: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके, हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, धन्यवाद।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111
4: सुनते पोस्ट बॉक्स नंबर 111 रिले कृपया चरकुल आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रहो।

ट्यून कुछ चिन्ह बीच के लिए और 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो होम सवार सागर अच्छे आपण सहित स्टूडियो घटे समय 12:06 आरंभ कर प्रोग्राम किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स मनीष जीवन में हसर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही हस जनक सुस्थ सतीश रखा सह दीर्घायु करें कि फ्रेंड्स आज चापग्रस्त मनीष मुहर कि हस धीरे धीरे उड़ी जाए गवेषक मान मत जो दीर्घ वर्ष पर्यंत सुस्थ रही प्राय 80% लोक केवल हसवा जो दीर्घस्थायी बंची गवेषण जापार तो फ्रेंड्स किसी कथा किसी गीत आज कथा कि हस आम लाइफ हस आम पर जरूरी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक ट्यून कुचिन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकाडक दलचल दल तकरे रेडियो हम सबर सागर अच्छी आपन के सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता आउ किछ कथा किछ गीत रे जे में कथा उचे हस हम पई केते जरूरी हम फ्रेंड्स टिके हसरे बदल जाए संपर्क डरी पर हो जाए आपणार एवं गढ़ी उठे मधुर संपर्क बिल्कुल हस गोटे 24 क्यारेट सुना भाई ए खाद न था फ्रेंड्स जदि हसरे छल न मिसे सांगे सांगे बारी हो जाए ठीक कहले ना बिल्कुल आगो कथा शुणी नंतु ए ब्यूटिफुल ट्रैक टे स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक चुन कुछ मेजिकल योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक देर से लेल तक रेडियो एम सुपर सागर अच्छा आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स हस शरीर रु स्ट्रेस हार्मोन नियत पेपर कमाई थे फल रे अवसाद चिंता आदि मानसिक रोग रु मनुष्य को मुक्ति दिए पाठ पढ़ा टू नहीं चाकरी किंबा पारिवारिक अशांति भली अनेक समस्या आज आम समस्ते छंदी हो पड़ते विशेषकर आज सोशल मीडिया जुगरे परस्पर हसीबा समय बीतवा यह धीरे धीरे कमी जा मनीष मिले थी हस खोजुच्छी मनीष

वेलकम बैक टू उनको चिन्ह म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक रे रेडियो हम सुबह सागर अच्छे आपन के सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स हस मानसिक यंत्रणा को निहति भाव रे ह्रास करता है एवं चापुर मध्य मुक्ति प्रदान करता है टिके हसरे पड़े संपर्क मूल दुआ आपण टिके हस दूर करे अनेक वेदना आउ फ्रेंड्स टिके हसरे पर हो जाए आपणार तेणु फ्रेंड्स हसवा को जमार भी कुंठित हूं ना हसंतु आउ समस्त को निहत भाव हसंतु तो फ्रेंड्स एटी शेष कर आज किसी कथ किसी गीत प्रोग्राम स्टे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक

0: ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ ବୋକାଟାକ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତାକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ବିଶାଲ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और

0: जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्य

वेलकम बैक चुनको चुन म्यूजिकल इयर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक डेट से लेल तकरे रेडियो वन सबर सागर अच्छा आपण के सहित सो चलची आजि चर्चा रे आउ आजि चर्चा रो टॉपिक ए थिले कि आपण आपण कर सीक्रेट कहा सह प्रथमे शेयर करबा को पसंद करंती मो पकरे दुई मेसेज असि पहुंच जाई छि देखबा के करचंदी आ कोड करचंदी प्रथम एसिस्टी करचंदी पूजा भुवनेश्वर से लिखिचंदी सागर भाई गुड आफ्टरनून तुमको मध्ये गुड आफ्टरनून पूजा से लिखिचंदी कि मोर प्रथम सीक्रेट मु मो फैमिली सह शेयर करबा को बहुत पसंद करे बहुत बहुत धन्यवाद पूजा तुम्हारे ब्यूटीफुल मेसेज पे परवर्ती मेसेज करचंदी टुना भाईना मेडिकल कॉलोनी जगतसिंहपुर रो से लिखिचंदी शुभ मध्याह्न सागर भाई माँ सरला आपण को आपण परिवार को भलरे रखंतु खुशी रखंतु इतिकि प्रार्थना करूछि भाई आपण को उपस्थापना बहुत भलो लागुछि सेतिपई बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद टुना भाईना आपण स्नेह और भल पाइबा जदि आम सागरे रही था तेबे निश्चित आम आगु आहुरी मध्य बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करिपरिबु टॉपिक उपर ये कहिछन्ति कि भाई मु मो सब सीक्रेट प्रथमे मो नना को कहथिली 8 वर्ष होला से आउ नाहंती एवं एबे मु मो स्त्री को से सीक्रेट कहे बहुत बढ़िया मेसेज टी करछन्ति टुना भाईना मेडिकल कॉलोनी जगतसिंहपुर रो फ्रेंड्स केबे केबे आम सीक्रेट आम पई भारी इमोशनल हो जाए नुई कि जेतबेले आमे सेही लोकन को खोजु जे हमकु जज करिवे नै बरम बुझबे सतकता हेउची सीक्रेट शेयर करबा को मनटा निहति बाबरे हल्का हे छै किंतु ठीक लोकन को शेयर करबा मध्य निहति बाबरे जरूरी तो फ्रेंड्स जांको सह आमे निजर हस कांद आ सीक्रेट सब शेयर करि परु से माने ही आमा जीवन रो सबटुर स्पेशल लोक आ से फैमिली छडा के भाई परै

वेलकम बैक ट्यून को चुन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क देख से दिल तक रेडियो हम सबर सागर अच्छी आपण के सहित सो चलची आज चर्चा रे आज चर्चा रे गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मु आपण को पचारी थिली कि आपण को सीक्रेट आपण का सहित प्रथम शेयर करबा को पसंद करंदी मो पाखे बहुत गुडे मेसेज आसी पहुंच जाइए देखा परवर्ती मेसेज टी किए करोट कर पूजा फ्रॉम त्रिशूलिया कटक क्रू से लिखी हेलो एफएम रेनबो फैमिली विशिंग यू ए वेरी गुड आफ्टरनून आपण वेरी गुड आफ्टरनून पूजा से लिखी यू आस्क्ड अबाउट विथ हुम आई वांट टू शेयर द सीक्रेट ऑफ माय लाइफ फास्ट एंड दैट पर्सन इज माय मदर भाग्यवती पाढ़ी लिखिंट कि दैट पर्सन इज माय मदर इज भाग्यवती पाढ़ी लेट मी टेल यू व्हाट माय मदर इज द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज सी हैज आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ माइन व्हाट एवर आई एम बदर्ड विथ समथिंग और इफ आई हैव समथिंग टू शेयर द फर्स्ट पर्सन आई थिंक इज माय मदर तो इफ एम फैमिली आई वॉन्ट टू थैंक माई मदर मम्मा Thank you so much for being there whenever I need you and don't worry soon I will fulfill all your dream. बहुत सुंदर मेसेज टी लिखी चंती पूजा त्रिशूलियारु कहीं ना मामा तंको पाए सबु किछि आउ से मामा को सहित प्रथम सीक्रेट ही शेयर करबा को पसंद करंदी आउ भविष्यत रे से मामा कर सबु स्वप्न पूरा करिवारो मध्य प्रतिसुद्धिबद्ध निहांती भावरे कारण मामा माने वाकिंग लाइट डिटेक्टर कारण चुप रहिले भी सेमाने सब किछ बुझी पारंती परवर्ती मेसेज टी संतोष बेहरा कंटिलो आठगोडरु लिखिछंती से लिखिछंती जय श्री राधे राधे सागर भाई गुड आफ्टरनून तुमक बंध्य गुड आफ्टरनून संतोष भाई से लिखिछंती मो सीक्रेट कथा प्रथमे मो जीवन साथी

0: Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur, and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is controlling hypertension together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable, says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को

0: रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
1: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान

0: मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा है। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम

0: विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इतर दिन कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी दिल्ली रो ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। अमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनिपरिबे विज्ञापन विरती पारे।

ट्यून कुछ चीनी म्यूजिकल ये और 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बुक अटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अच्छी आपन सहित स्टूडियो गुडरे समय अपराह्न 3:48 आरंभ करचु प्रोग्राम मो देश मो देश रे आज हमें स्मरण करबा एमिती जणे अद्भुत साहसी नारी को जे निजर शेष निश्वास पर्यंत देशर सेवा निजको नियोजित करथिले से आउ केही नहुंती से होचंती स्वाधीनता संग्रामिणी कल्पना दत्ता कथा बा किंतु ए ब्यूटीफुल ट्रैक परे स्टे ट्यून्ड

वेलकम बैक टू उनकर चंद म्यूजिकल यूर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकाडक दलचल तकरे रेडियो हमसबर सागर छ आपनको सहित सो चलची मोदेसा

सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

हाँ साथी, जिंदगी तो दो पल की ही है। कभी कभी ऐसा ही लगता है ताले ये जो दुई पल रे बीती जाऊ समय तापाई तो अपेक्षा कहीं की करिवे निज पाई किसी सहायता समय निश्चय काढ़े एवं से सहायता समय रे निजो को भल लगुवा किसी कम करिवे ए आशा ए विश्वास आपण को मुझे जाऊँगी। जमा डेरी करिवेनि, आज ठू ही ट्राए करिवे जे निजो को भल लगुवा किसी जिनस निजो को खुशी कर दूसरा किसी जिनस।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई है। एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनालिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड।

0: रिलेटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, गिल्ट की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डाले। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए, तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दे और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे, ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो, तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: ସୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲମ୍ହେ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 5:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ।
2: ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସହ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33 ରୁ

0: कहानियों के नगर में खो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन थे जिसको हम रविवार बोलते थे, इतवार बोलते थे, संडे बोलते थे, और हम झूम जाते थे, खुशी से नाच जाते थे जब वो दिन आ जाता था। हाँ, छोटे बड़े एमती किसी मोमेंट्स, एमती किसी खुशी कारण को नहीं कि ऐसे था आम पक्ष को रविवार और से रविवार के कौन कौन आप सब करुले बर्तमान तक मिस करती आहरी उपर तो डेली लाइफ चिटचाट रे कथा होचे आमे आपण माने कॉल करछन देखिबा परवर्ती कॉलर के कौन कहउछन रविवार रा दिन रे से कौन करथले आ तक मिस करनती बे बहुत। नमस्कार, के कहउथले कोठु कहउथले? हेलो नमस्कार।
1: हां हां भाई नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: रविवार आपणकर पिलादिने कटुथिला एवं कोन कोन सब करुथिले जहा के भारी मिस करंदी आपण?
1: हाँ, बहुत सुंदर टॉपिक आपण नै आछन्दि, किंतु मु एही टॉपिक ऊपर गले आपणकु अन्य 30 रु 35 वर्ष तळकु मते जीवाकु पडिबो।
0: निश्चय हमकु नै जानते भाई, आमे जीवा पे रेडी अछु।
1: हां, से समय बेलू गले से समय जो छोट बेलर कहानी जमी खक्का मटका थिला से गुड़ा तो मन पड़ी जाए बेले बेले चगलामी छोट बेलर जो दुष्टामी जमी कटिचे बहुत किसी भलि भी कटिचे कि दुष्टामी भी कटिचे। से समय शुणु आम जो छोट था रविवार दिन छुट्टी देखू मानने कौन करू आम से समय कौन हुए ना गाँव मैंने

0: ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2025ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଚାପ ଦିବସ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆର୍ସିବି 222 ରନ୍ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ 223 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 17:30ରେ ପରସ୍କରକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

वेलकम बैक टू इनकर्शन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कोचंती दिल से दिल तक वर्तमान समय आपण मानक बाकी किसी कार्यक्रम

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश

की भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

वेलकम बैक टू करचंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को होचंदी दिल से दिल तक स्टूडियो घंटार समय वर्तमान संध्या 6:30 भावर गीत किछि सुनिबार समय भक्ति भावर टिके हजिबार समय आरंभ करछु भाव भक्तिर कार्यक्रम आराधना

की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

विश को आमे पहुंचे दबु रेडियो अगणारु समस्तंक पाखरे माने तांक पाखरे मध्य नंबर होची 0949596321 आज जदी व्हाट्सएप रे करबा पई चाहुचंदि हमको मेसेज आ जणेबा पई चाहुचंदि किछि विश किछि कथा काकु कहबा पई चाहुचंदि आपण तबे 8895254200 होची नंबर 8895254200 होची नंबर आपण माने डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप करि परिबे नहले आपण माने हमको करि परिबे एसएमएस एफएमआरसी लेखिकी मेसेज रे आपणकर विश आपणकर कथा मनर कथा जदि कहार अछि बर्थडे तार विश नरे एनिवर्सरी विश नहले किछ कहबा पई चाहुचंद जदि कहाको पठि दियंतु हमर नंबर रे 0949563210 रे तेरे साथी बर्तमान गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आपण मानक पई पूरा एनर्जेटिक ट्रैक इन संडे रो इवनिंग रे जदी चली छे आपण को कोठी पार्टी तबे निश्चित भाव रे ए गीत टी पूरा जमे दबा आपण को पार्टी एनवायरनमेंट को

दिल भी गया रे, दिल तो गया है आपके पास ही रुका है, और दिल से दिल तक का सफर में दिल से दिल तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आउट के स्ट्रॉन्ग कर चाहे हमें माने आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सहित आपण जोड़ी के अच्छा साथी वर्तमान आ गोटे सुंदर मेसेज देखा कि करिचंती कोठु करिचंती मेसेज टी आसी टाटा स्टील प्लांट रु करुचंती आमर आभा सेन रोहित राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव कौन लिखुचंती विश्वेत भाई गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील प्लांट परिवार तरफ ओडिशा वासिन को प्यार भरा नमस्कार भाई सब आरजी मान को वेरी वेरी गुड इवनिंग नमस्कार भाई आमर आज स्टाफ राजकुमार भरद्वाज कर हैप्पी बर्थडे ओ हैप्पी बर्थडे राजकुमार जी आपको ढेर सारे शुभकामना जन्मदिन के तेबे लिखुचंती जे बहुत बहुत शुभकामना जणै देबे निश्चित भाबरे जणै देलु राजकुमार भरद्वाज को तंगर हैप्पी वाला बर्थडे रे एवं गोटे सुंदर कथा भाई आसत ऐड करबा पई चाहिबी आमे जतबे क्लास रे लिखुचंती क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे कि अब हमारी वारी है समझ में नहीं आता कि जब जनाजा को हम देखते हैं तो ये कभी नहीं सोचते वाह बहुत सुंदर कथा टी कहिले एवं लिखिचंदी जे समस्ते ए जीवन को बन भरी के एंजॉय करंतु समस्तंग पई भलो कथा चिंता करंतु भलो भलो कथा करंतु एवं वेरी वेरी गुड इवनिंग सहित आभा सेन रोहित राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव टाटा स्टील प्लांट रु ए सुंदर मेसेज हम को करिचंदी बहुत बहुत थैंक यू आपन के सुंदर मेसेज पई आउ गोटे छोटिया एवं स्वीट मेसेज आसिकी पहुंची आमको सर गुड इवनिंग लिखुचंती आपन को मध्य गुड इवनिंग सरोज फ्रॉम केउंझर सरोज लिखुचंती जे आगुरु बहुत मोबाइल रे रील्स देखिबारे टाइम बीती जाउथला वर्तमान मु डेली रेडियो सुनुची।

Yes, sir. Welcome back again. Tune kar chhende 100.4 Akashvani FM Ranbao ko chhende dil se dil tak. संध्या बढ़ी बढ़ी वर्तमान आम आगू बढ़ुचे आपण मैंने अच्छा म्यूजिकाल हमसफर विश्वजित सहित रेडियो से पाखे आपण मैंने समस्ते रेडियो पाखे मु स्टूडियो घंटे हाँ समय हो जाए 8 बाजी 2 मिनिट मैंने स्टार्ट करने पड़े वर्तमान गीतरे मितरे एवं गीत गाऊ गाऊ गीत शुणु शुणु मित मानी मोर प्रिय मित मानी मुझे किसी ब्यूटिफुल इनफर्मेशन नहीं आम कि इंटरेस्टिंग गीत गुड़िक आज आम शुणा कौन इंटरेस्टिंग गीत जो चलचित्र गुड़क आमको बहुत भयभीत कर डरई सस्पेंस थ्रिलर हॉरर भूत प्रेत यह सब कहानी भितर आमको पूरा हजेई डरई किंतु तार गीत गुड़िक तार मेलोडियस ट्रैक गुड़िक आम जिस्म जहां में पूरा सेव हो रही जाइए पूरा हार्ट एमती करदे इच्छा हुए जो गीत गुड़िक शुणु आम एवं बहुत भल लगे बहुत मेलोडियस से ट्रैक्स गुड़िक तारी उपरे आज गीतर भितर आम कथित गीत शुणा कौन ना भयर कारण फिल्म गुड़िक जो गुड़िक आमको बहुत भयभीत कर दिए फिल्म गुड़िक चलचित्र गुड़िक भयभीत कर दिए कि तार ब्यूटिफुल ट्रैक्स तार मेलोडियस कंपोजिशंस गुड़ाक आम मन को खूब छुई जा एमती किसी गीतर पिटारा नहीं कि गीतर भितर को स्टार्ट करुचु फर्स्ट गीत बाजू बाजू आपण मान मन पड़ जा 1965 रो सही एवरग्रीन सस्पेंस थ्रिलर हॉरर फिल्म जहार नाम थिला गुमनाम

हॉरर फिल्म्स रा मनोज रा गीत यारी भीतरे गीतरे मीतरे चली छि आपण माने अछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो संगे रे कहू छंती दिल से ही दिल तक तबे राज सीरीज को आगु को बढेबा राज रो नेक्स्ट पार्ट गुडी को विषय भी कथा आबा किंतु ता पूर्व रो आउ गुटे ब्यूटीफुल हॉरर फिल्म जहार गीत गुडी को मध्य हमकु बहुत भलो लागितला एवं आदित्य नारायण उदित नारायण को पु आदित्य नारायण को डेब्यू फिल्म थिला ये आपण गेस कर सरिबनी मु को फिल्म कथा कहू छि मु कहू छि 2010 मसीहा 19th मार्च रिलीज विक्रम भट्ट डायरेक्टेड आउ गोटे हॉरर फिल्म रोमांटिक हॉरर फिल्म सापित विषय रे सापित रो गीत गुडी मध्य बहुत सुंदर थिला एवं मैक्सिमम गीत गुडी को संग बाय आदित्य नारायण निश्चय गीत गुडी को बहुत सुंदर भाव रे गाई थिले इथरे चाहता कितना तुझको दिल कभी ना कभी तुम मिलोगे एभली गीत गुडी को बहुत लोकप्रिय होता एवं आज पर्यंत मध्य ए गीत गुडी बहुत पॉपुलर बहुत सुंदर भाव आम मान मन को मोही पारी फिल्म टी ए फिल्म जी आमको डरी ना ता गीत गुड़िकाठ अधिक मन छुआ हो पार्ला तेज चलत सापेद फिल्म रू ब्यूटीफुल ट्रैक शुणा आगे बढ़िया

0: ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ସାଙ୍ଗରେ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:45 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन

0: टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पासर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें

14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव

और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयाशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन

क्या बात है, आपण भी झुमुचंदि ना मो संगरे अभुला स्मृति रे अछे। आमे अभुला गीत गुडी को सुनुचे एवं अभुला गीत गुडी करे आजी मु बाछी बाछी आनीचे एमिति किछि गीत, एमिति किछि पुरणा चलचित्र रे गीत जुगुडी को द्वैत कंठ रे नारी कंठ शिल्पी माने गाइछन्ति एवं खूब लोकप्रिय से गीत गुडी को। एबे जीवा इंडियन एपिक ड्रामा ऑल टाइम लेजेंडरी फिल्म जहाँ को आज पर्यंत सिनेमा स्क्रीन ने देखा भल लगे, टीवी रे स्क्रीन ने देखा भल लगे, से चलचित्र नाम हूँ मुगले आजम। 1960 चलचित्र जो थे बहुत सुंदर भाव संगीत दे नौशाद अली और शकील बदोनी लेखा ये गीत गुड़िक कालजय कर रखी। ये चलचित्र प्रत्येक सीन आपण मन था न था कि गीत गुड़िक निश्चय मन थी। चलचित्र गोटे एमती गीत जहाँ को गाई लता मंगेशकर एवं शमशाद बेगम एवं सहित थिले अनेक नारी कंठशिल्पी जो मैंने कोरस वॉइस देते मोगले आजम तेरे महफिल में ये सुंदर गीत जहाँ आज ट्रेंड करुची इंस्टाग्राम एवं अदर प्लेटफॉर्म्स गुड़ी करे, रील्स गुड़ी करे। तो चलन तो सुनिबा से ब्यूटीफुल ट्रैक को।

अपलम चपलम दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वाह, जेते बड़े गए लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर एवं आशा भोसले पी कंठशिल्पी माने बॉलीवुड रे थिले, हिंदी चलचित्र रे थिले एवं एई बड़ी द्वैत कंठर कथा, द्वैत कंठर गीत, नारी कंठरे दुईटी फीमेल सिंगर कंठरे जितेबेले गोटे गीत को सुंदर करिवार कथा आसुतला, सेमानंको मुह जेमिति सामना को आसी जाउतला म्यूजिक डायरेक्टर्स मानंको पाखरे, सेमिति आम ओडिया इंडस्ट्री में पछरे नथिला। आम ओडिया इंडस्ट्री रे मध्य थिले दुई दुई जण एमिति रत्न, जणे रत्न तो एबे आम गहणे नाहांती किंतु आउ जणे एबे मध्य आमरी गहणरे अछंती। मु कहुछि तृप्ति दास एवं गीता पटनायकंक कथा। ए दुई जण सुपर हिट लेजेंड ओडिया सिंगर, लेजेंडरी ओडिया सिंगर एवं तांकु जेतेबेले एकाठी गोटे गीत को गाइबार सुजोग मिलला अक्षय महांतिंकर संगीत एवं अक्षय महांतिंकर गीत रचनारे से इतिहास पलटिगला से गीत। आज मध्य प्रत्येक मंचरे से गीत, आज मध्य ओडिया झीटटीए गीत गाइबा आरंभ कले हारमोनियम धरिकी कौटि ना कौटि सुगम संगीत चलचित्र गीत गाइबार कथा आसिले एही गीतटी मंचरे निश्चय परिवेशित हुए। दुई जण सिंगर जदि गाउचन्ति एही गीत को निश्चय गवा जाए। जाजावर चलचित्र ऐतिहासिक गीत जहाँ गाइथिले तृप्ति दास एवं गीता पटनायक, चलंतु सुनिबा एवं मन को उड़े दबा बणी भुणिया करिकी। Oh, oh, oh.

सफर विश्वजित अच्छी आपण मानक संगरे वर्तमान समय कही सरलाणी आपण मानक फरमाइज को पूर्ण करिवार सिलसिला को करबा पई पड़िबो स्टार्ट माने रेनबो एसएमएस हे सारी आरंभ यस एवं ए रेनबो एसएमएस रे आपण माने आपणकर मनपसंद रे गीत रो फरमाइज हमको पठाई परिबे निजो फोन माध्यम रे व्हाट्सएप माध्यम रे हो बा एसएमएस माध्यम रे हो आमको जदि एसएमएस करबा पई चाहंती को गीत सुनबा पई चाहुचंती काकू डेडिकेट करबा पई चाहुचंती को चलचित्र रो गीत को एल्बम रो गीत पठि दियंतु ना फोन एसएमएस बॉक्स को जानतु टाइप करंतु एफएमआरसी लिखंतु क्यों गीत शुणा चाहूंटी क्यों चलचित्र क्यों आलबम से गीत क्या डेडिकेट करने चाहूंट ना एवं शेष में निज ना ठिकना सहित पठ दिं आम नंबर 09495963210 तबे प्रथम फरमाइशी आमे नहीं जीवा जोटा कि आसिकी पहुंची एसएमएस मध्यम आमको ये फरमाइशी कर चंद्रकांत पृष्टि गोपपुर निश्चिंत कोइली कटक्रु एवं चंद्रकांत शुणापी चाहती एतराज चलचित्र गोटे सुंदर गीत आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया एवं लिखी चंदी जे गुड इवनिंग समस्त को गुड नाइट मध्य समस्त को एवं प्लीज प्लीज प्लीज माय फरमाइस प्ले करिवे निश्चय निश्चित आपनकर फरमाइस प्ले कर दउछु आपनक अनुरोध रे ए सुंदर गीतटी फ्रॉम द मूवी एतराज रेनबो एसएमएस रा फर्स्ट गीत हिमेश रेशमयांकर कंपोजिशन एवं अलका याग्निक उदित नारायण को कंठरे

तबे साथी समय रो जो पाबंदी ताकु ध्यान रे रखी मु कोन काम करबी गोटे भाबी छी जेमति आपन मन को अनुरोध रहू छी जे आपन मन कर ना टिके पढे दवा पई जदी फॉर्मलिटी पूर्ण न हे पर छी तबे चेष्टा कर छी जति कि ना संभव से ना गुडी को ऐड कर दवा पई हमहु का जे मेसेज करथिले समीर खटुआ नरसिंहपुर केंद्रापड़ा रु हमहु को मेसेज करथिले टुना भाई ना मेडिकल कॉलोनी जगतसिंहपुर रु हमहु को मेसेज करथिले रामचंद्रपुर रु प्रेमानंद महापात्र आमको मेसेज करथिले आज प्रगति कुटीर सीडीए सेक्टर 12 रु प्रदीप कुमार सामंत सिंघार आज आमको मेसेज करथिले रमेश चंद्र साहू आउखामा भापुर ढेंकानाल रु मेसेज करथिले जहां को अनुरोध हमर सब पूर्ण करि परनु पूजा सौरीपुर महासिंहपुर बहुग्राम डिस्ट्रिक्ट कटक रु आमको मेसेज करथिले भरत चंद्र नायक कल्पना महांती सोम प्रकाश सीडीए 6 कटक रु आमको मेसेज करछन प्रभात बड़ियार सिंह चंदन टुनी बांकी कॉलेज।

0: ସେଥି ସମୟ ଦେଲାଣି ସାରା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍କୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य

0: में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कटक केन्द्र रो
2: आज शेष समाचार मुख्यांश सह मु सुभाष चंद्र शतपथी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुईदिनिया स्वीडेन गस्तरे जाई गोथेनबर्ग ठारे पहुंची। स्वीडेन प्रधानमंत्री सह श्री मोदी द्विपाक्षिक आलोचना करिछन्ति। आसंता 25 तारीख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 131 जन को चलित वर्ष पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। केरलम नुआ मुख्यमंत्री भाव आसंता काली शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस नेता भिडी सतीशन शपथ पूर्व मंत्रिमंडल तालिका आज प्रकाश पाई। हरमुज प्रणाली दे शत्रुपक्ष सामरिक उपकरण परिवहन को अनुमति प्रदान करान घोषणा। ओडिशाकु दुईदिनिया गस्तरे आसी भुवनेश्वर में पहुंचले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई पक्षर् छात्र छात्री परीक्षा खातार पुनः मूल्यायन देय ह्रास। प्रभंजन मल्लिक ओडिशा क्रिकेट टीम नुआ कोच निजुक्त। आईपीएल क्रिकेट रे धर्मशाला रे अनुष्ठित मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुर पंजाब किंग्स को 23 रन रे परास्त करिछि। राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। आज 11 शहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही बेले राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा बौद्ध ठारे 42.9 डिग्री रिकॉर्ड करा जाई छी। समाचार मुख्यांश आज पई एतिकरे शेष होला।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी।

0: सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

गीत पर पुणी स्वागत आपण माने ट्यून कर छोंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे देव मित्र आछ आपणक सहायता आपण माने मो सहित कनेक्टेड हे के छोंदे मो आपणक सहित कनेक्टेड हे के अछि बस ई जो इनर वॉइस अछि आम भितरे निहाती भाबरे ई वॉइस रो जो जादू अछि आपणक पखरे निहाती पहुंचो छि बस बेले बेले मते एम्ती फील हुए जदि आम पखरे कथा कहिवार सेई पावर नथांता आमे कथा कहि पारु नथांता ताले केमती हेतांता सत कथा कहिबाकु गले बिना कथा रे लोक माने केमती बंची परंते सेटा तो भाबीबा बळे बळे बहुत कठिन हेई पड़े किंतु आज मु एक कथा कहिंग आपण मानको कहूची कहिंग ना आज बहुत ही स्पेशल डे आज होची वर्ल्ड वॉइस डे हां आमे जितबळे प्रथमे धरापृष्ठ को आसीथिले सेतबळे आमो मांकर से जो स्वीट सा कंठ एबीबी आमर निहाति मन थिबा आमर से जो कुआ कुआ राब आमो मां को पाई भी गोटे सुंदर शब्द हे कि सब दिन पाई रही थिबा काहेकि ना आमो मां को पाई सेटा थिबो तांको जीवन रो प्रथम संगीत खाली सेते कि नोह कथा कहिले ना अनेक किछि हृदय भीतर हल्का हे जाय आ ह अनेक भावना अनेक अभिव्यक्ति समस्तक आगे व्यक्त हे जाय आ आमको गोटे परिचय मध्य मिलिथाय केबे भाबि छंती आपनकर गोटे शब्द भी कहार दिन को खुशी करि पारे आ गोटे कठोर कथा कहा मन को भी भांगी दे पारे जिते बड़े आप कथा कहते भाभी टे कहतु कहीं आपण सामने लोक मैंने हट न हूं वॉइस रो जादू देखी पारुछंती तो ए जादू आपण सहित मुहती बांटी कि आसत शुणा मैजिकल ट्रैक ओनली 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक स्टे ट्यून्ड।

सुनिश्चित प्रमाण देव मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक रैंड दल से दल तक शो स्टार्ट की जाएगी मॉर्निंग मेलोडीटा आज बहुत गोटे खास दिन कहीं ये मात्र गोटे दिन नुह यह हूँ आम पृथ्वीर सब महान जीव पाई आम दायित्व और स्मृति कथ मान पक आम सब हाथी आम साथी आज हूँ प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे हाथी केवल गोटे पशु नुह ये गोटे भावना आमे ओडिसारे तो हाथी मानंकु गज बोली पूजा करी थाओ सहित जड़ित अच्छी आमर धर्म संस्कृति आ प्रकृतिर संतुलन किंतु दुखर कथा आज विशाल जीवटी अनेक समस्यार सम्मुखीन होउछे जंगल कमी जबा रेल और विद्युत तारर दुर्घटना एवं हाथी मनीष संघर्ष ये सब कारण हाथी संख्या दिनक दिन कमिबारे लगी भाई जो हाथी जंगल राजा से हाथी आज आम पाखे सुरक्षा चाहू घर घर आम नहींगल पथ आम बंद करदेल आय आसी आम कि जंगल को सुरक्षा दबा हाथी करिडोर को सम्मान करंतु अनेक समय जो रास्त गाड़ी नहीं कि जाई था देखी था कि हाथी चला पथ से समय गाड़ी टी स्लो ड्राइव करंतु आउ अवैध शिकार विरोध में सचेतन हूँ छोट छोट पदक्षेप सब बड़ बड़ पर आनी पारे आम समस्ते मिसी शपथ नवा जे हाथी मानंको आमे रक्षा करिबा आउ प्रकृति को रक्षा करिबा प्रकृति बंचिले ही आमे बंची पारिबा एक कथा सहित आसंत शुणा कि ब्यूटीफुल म्यूजिक ट्रैक ओनली 100.4 आकाशवाणी।

0: वेलकम बैक टू इनकर चंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंदे दिल से दिल तक समय वर्तमान हे गई छी त आपन मन क सहित डायल इन लाइव चिट चैट रे कथा बा पई रेडियो ए पखरा से के पहुंच जे छी आपन कर म्यूजिकल हमसफर विश्वजी धड़ा धड़ा पृष्ठा तार भारी चिक्कण मो स्वप्न और कल्पनार सत जेमती से दर्पण सांगरे थाए मोर रंग पेंसिल मनर कथा सबू आंके छिलमिल गोटे पहाड़ आउ से उदिया जह्न बा उदिया सूर्य मो तुड़ी साजे सेठी निपुण कार्य छोटिया घर टीए बंका नई धार आकाशे उड़ू थांती पक्षी बारंबार लाल नेली हलदिया सबु रंगर खेल मो ड्रॉइंग खाता सह मो रंगर मेल भूल हेले लिभे दिए मो रबर को घसी घसी पुणी थरे आंकी दिए मन को मन हसी बड़ हेले हुए तो बदली जीव दिन रही मन ही सही पिलाड़िया मी मन हेले साइति रखी थी भी सबुबेले मो स्मृतिर खाता गुणगुण गाउथबो से पिलादिनर मोर कथा किए सी ड्रॉइंग खाता साथी आज वर्ल्ड आर्ट डे सेमती तो कलार अनेक माध्यम अच्छी कलार अनेक सृजनशीलतार परिप्रकाश अच्छे किंतु ये जो ड्रॉइंग करी बाबा छवि टी आंकी बाबा चित्र टी आंकी बा ये आम समस्त इमेजिनेशन को छोट बड़ गोटे व्यापक दिग दिए समस्ते जे प्रत्येक मनीष भितर जे सृजनशीलतार गोटे नुआ नुआ दिग अच्छी समस्ते जे अलग या दर्शाए ये चित्रांकन मुझे चित्र टी आंकी आप गोटे चित्र टी आंकी एमती प्रत्येक पिला गोटे नुआ नुआ अंदाज रे निजर चित्र को आंकी से तारी विषय आज आम कथा जिते आपण छोट बे चित्र आंकुले ड्रईंग खाता टे रखी आपण से तो चित्र आंकुवे निश्चय किंतु से ड्रईंग खाता को छाड़ सारे आपण के कौन जीवन चित्र आंकी ड्रईंग खाता छाड़ला चित्र अंका अंकी हूँ ना ना ना सी ड्रईंग खाता खाली स्मृति रही जा तारी विषय आज आम कथा डायल इन लाइव चिटचाट्रे आसिग्राणी कल देखा किए कर फर्स्ट कल कौन कहते ड्रईंग खातार स्मृति विषय ड्रईंग खाता को छाड़ला सीए के आंकी चित्र विषय हेलो नमस्कार किए कहते कौट कहते
1: नमस्कार
0: किए कहते परिचय दे दिखते भाई
1: भाई आवास कह भाई आम तो कहीं मेसेज नकल ना दे दिखे
0: भाई निश्चित निश्चित नहीं नहीं निश्चित भाई निश्चित भाव में चेस्ट करू कौन कर भाई कौन कर समय स्वल्पता भाई एमती रोचे समस्त को टिके माने सब मेसेज को स्थान देवा पड़ो निश्चित भाई चेस्ट कर डायल इन टॉपिक विषय कहतु कौन कहे भाई आज जो टॉपिक रखीचे जे आप ड्रॉइंग खाता को छाड़ला चित्र चित्र अंका अंकी कर ना जीवन ने आगे बढ़ी जाए ना से स्मृति रही जाए ड्रॉइंग खाता आप
1: नाई भाई देख सब दिन आर्ट होती जेहेतु आम प्ले पोस्ट जब कर टाटा रे
0: सब दिन कोथरे कोथरे जॉब करचंदी
1: टाटा रे
0: आज्ञा आज्ञा
1: सब दिन आम प्रोजेक्ट आउती सब दिन प्रोजेक्ट किसी ड्रॉइंग कर आर्ट कि ड्रॉइंग न करले प्रोजेक्ट काम होनी नीतिदिनिया
0: अभ्यास ड्रॉइंग गुड़ी को जब आ गए नुआ रूप पाथ सार्थक रूप पाथ से भारी खुशी लगे
1: भाई देखो डे अच्छे मार्च पांच बड़ प्रोग्राम फंक्शन हुए सब भेंडर कर्मचारी भेंडर पे इंजीनियर स्टाफ एम्प्लॉय स्टाफ से दिन जमीन गोटे ड्रॉइंग गोटे बड़ आकार ड्रॉइंग देखिए भाषण दबु चित्रांकन देखू प्रतियोगिता करू तार भी अच्छी फास्ट सेकंड थर्ड अच्छी प्राइज अच्छी बड़ आकार फंक्शन हुए
0: बाहर चित्र अंका अंकी कथा जो छोट बेले ड्रईंग खातार ये वर्तमान पर्यटन बजाय रही है
1: मानते ड्रईंग कर बयसीमा था पाठ कले भी तार बयसीमा तार नीति नियम नाम जो पोस्ट सब दिन भी प्रोजेक्ट भी ड्रईंग कर
0: किसी कर छोट बेले आप अंका अंकी कर ड्रईंग ड्रईंग
1: बहुत
0: अंक
1: पे सब कोड़े पचीस जन मत ड्रईंग खाते भी धरे दौरे
0: मैंने समस्त निजे आंकी दौले
1: निजे आंकी दिए मतलब टाइम आंकी दिए पिला नंबर कटिजी कि

0: सुंदर भाव शुणु मेसेज कर सब साथी मैंने मेसेज कर समय सीमा अच्छी जानते हाउ भाई निश्चित भाव में अनुरोध को निश्चित भाव भाई स्थान देवाई चेष्टा कर कहले समस्त ना कहीं पढ़ुनु तार उत्तर मुझे शुणु तार उत्तर हूँ आज डायल इन लाइफ चिटचैट जो अच्छी डायरेक्ट सहित कथा किंतु रेनबो एसएमएस कार्यक्रम मन पसंद गीत को आम स्थान दवा जो श्रोता बंधु मैंने फरमाइश कर गोटे गीत को लेकिन कार्यक्रम स्थान दवा सुंदर सुंदर गीत सहित ना पढ़ा हम सी कार्यक्रम सौंदर्य विशेषत्व जदि खाली आपंटे पढ़ीदे आप अनुरोध करते गीत न दे पार्थ्वा समय स्वल्पता दृष्टि कौन से कार्यक्रम से उपभोग्य हो पार भल लगे निजे भावंतु धरतु मु आउ गोटे श्रोता बंधु फरमाइश रीत बजाऊ सहित एमती भी आम अनेक समय करुचु समय स्वल्पता दृष्टि केतबेले ना पढ़ी दौचु किंतु से कार्यक्रम विशेषत्व हूँ आपणकर ना सहित आपणकर मनपसंद गीत सी ही तार विशेषत्व से चेष्टा करवा निश्चित भाव में आपण मानकर यथासंभव मेसेज को नवापाई और गीत को स्थान देवाई साथी कथा डायल इन लाइफ चिटचैट रे आज जे ड्रॉइंग खाता को छाड़ला परे आपण माने केते अंका अंकी करचंती बा ड्रॉइंग करचंती बा नितिदिनिया जीवन ने आपण ड्रॉइंग सहित चित्रांकन सहित जड़ित अछंती ना नाही ना सी बास गोटे स्मृति की रही जाय आसी छि परवर्ती कॉल देखबे की करचंती कुठ करचंती हेलो नमस्कार की कोथले कुठ कोथले
1: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: हां अशोक भाई नमस्कार आप केमती अछंती भाई आगे भाई भाई कौन कहिबे जो ड्रॉइंग खाता छोटो बेले आपण अंका अंकी करथले ना नाही चित्रांकन
1: आज्ञा छोटो बेले मु ड्रॉइंग करथली ड्रॉइंग रे क्लास रे प्रथम होउथली
0: वाह त माने आपण बहुत सुंदर चित्र कर छोटो बेलु
1: आउ बहु पाखरे ओळी बापा को पाखू जीवा को भय लागुथला बहु पाखरे ओळी करथली कलर बॉक्स पेंगी
0: अच्छा रंग बाबा बर बाबा
1: रंग बक्स बहु पाखे अड़ी करी मत रंग बक्स आणिक दि
0: जाऊ
1: ड्रई पा बेले बहुत भल ड्रई होता सूर्य उदय सूर्य आर आड़िया गक्षी उड़ी जाऊे
0: स्मृति सी सब ड्रॉइंग खाता वर्तमान अच्छी ना नहीं आपण पाखे वर्तमान आप चित्र भितर अंकन करती ना नहीं
1: संभव नुह जीवन जंजाल टॉपिक आज पिला दिन स्मृति खाली
0: सुंदर लाइन टे कहले स्मृति पटल आंकी से सब दिन स्मृति गुडाक भाई तथापि मुझे अनुरोध करी आपड़े समय पाए चेष्टा कर आंकी दवा देखिए भारी खुशी लगे भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई कल कले आम सहित कथे एम कल कर साथी साथी से जो जीवन धा दौड़ भितर जमती आम भाई कहले अशोक भाई जे वर्तमान संभव हो पार ना साथी टे संभव करने चेष्टा करूँ ना ये ही तो आज वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेट कर दुनिया एया ही आपन को मेसेज दूची आपण जो सृजनशीलता थिला आपण जो क्रिएटिविटी थिला आपण छोट बेले जो एक्साइटमेंट सहित ड्रॉइंग खाता रे कलर धरिकी पेंसिल धरिकी रबर धरिकी आंकी दौले कि नुआ गोटे चमत्कार गोटे कर दौले मन को मन खुशी होते तार जो आनंद धा धोड़ जीवन भितर आज कौटि ना कौटि हजी जाइए निश्चय ताकि खोजा चेष्टा करूँ निश्चय देखिए बढ़िया लगे आपन को आ गए कल देखा किए कर नमस्कार किए कौन कहते हैं हेलो
2: भाई नमस्कार
0: आज्ञा कहतु आपड़ के देह भल नहीं कि

0: उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु।
1: वयस्क तथा अस्वस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलांक पई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए।
0: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।

ଏଥର ମେସେଜଟି ଆମେ ନେଉଛୁ, ଆମକୁ SMS କରିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟତା ପୃଷ୍ଟି କଟକରୁ। ଶୂନ୍ୟତା ପୃଷ୍ଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। उदित नारायण मल्का अग्निक कंठरे ब्यूटीफुल ट्रैक टी सुनिया पई चाहिचंती एवं परे परे गुटे सुंदर भजन रिक्वेस्ट हमको करचंती आमर नियमित श्रोता समीर संगीता पंडा तेलंगा पेंठ कटकरु एवं लिखुचंती जे आज डायल इन लाइव बहुत भलो थिला। आर्ट कोई भी चीज नहीं, ये तो सिर्फ एक तरीका है। कलाकार माने चित्र

नेक्स्ट मेसेज टी आमको करिछंती लिख रहे हैं दिल से दिल तक सर नमस्कार आपका प्रोग्राम बेहद ही अच्छा लग रहा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दीसा गोस्वामी रेडियो इज माय लव लिखी चंदी रेडियो इज माय लाइफ लिखी चंदी और सुनना चाह रहे हैं राजकुमार फिल्म का ये गाना तुमने पुकारा और हम चले आए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी जी के आवाज में ये सुंदर गाना आपके लिए जरूर बजा देंगे हम आउ गोटे एस एम एस मध्य आम नहीं जावा जहाँ को करमको आमर नियमित श्रोता कौन लिखुचंती विश्वजित भाई आमर गीतटी निश्चय प्ले करिवे सुनिबा पई चाहिचंती नदी फेरे सागर को ए सुंदर गीतटी समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला मामाली कांटोलो गोपाल साही आठगढ़ निश्चित भाव में नागभस चलचित्र सुंदर गीतटी बैक टू बैक दुईट गीत आपण मानी स्टेट्यून

0: की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
1: तूने पुकारा हम चले आए जा।

ଏଥର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କି ରୂପେ ପାଇବି ତୁମକୁ ଖୋଜି ମୋ ଦିନ ତ ଯାଉଛି ସରିହେ। किशोरनगर कटक रु बाबन चंद्र पाल एवं ममता पाल अनुरोध रे सुंदर गीत टी प्ले कर देबी एवं परे परे नेक्स्ट गीतर अनुरोध हमको करी चंती प्रफुल्ल प्रधान चैतन्य चांद कुआरपाल माणिया बंधरु एवं सुनिबा पई चाहि चंती यादों की बारात चलचित्र रु चुरा लिया है तुमने जो दिल को एवं डेडिकेट करुछंती मुन्ना भाईना बामदेव भाई बासंती भूणी एवं सबु श्रोता बंधु मानंक पई निश्चित भाव रे बैक टू बैक एही दुईटी गीत आपण मानंक।

नेक्स्ट स्टेशन की व्हाट्सएप प्रेम को करिचंती भटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा निश्चित भाव शुणी चाहती सूरवीर चलचित्र आवाज हमारी ऐसी वादी में रहेगी ए सुंदर गीतटी प्ले कर दूचु मोहम्मद अजीज एवं कविता कृष्णमूर्ति कंठरे एवं परे परे आउ गोटे सुंदर गीत जहाँ शुणापी चाहती आमर श्रोता बंधु मैंने मध्य प्ले करदेबू समय बहुत कम साथी ए गीतटी शुणापी चाहती बामदेव पृष्टि झांझरी मंगला कटक्रु किसी नजर को तेरे रिक्वेस्टेड बाय बामदेव पृष्टि बांफी साई झांझर मंगला कटक्रु सुप्रभात जनई समस्त को नमस्कार जनई आशा भोसले और भूपेन्द्र कंठरे ये गीत शुणापी चाहते बैक टू बैक ये दुईट गीत आपण मान आशा कर एस एम एस रही जाइए से ना टे शेष को निश्चय पढ़ेदे आपण मान अनुरोध रोचे कितु से आमर टे समय बाबंदी को देखा पड़ू तथा चेष्टा करवा समस्त ना को पढ़ापी

तबे साथी वर्तमान शेष गीत बाजुची एवं ता सहित आपण मानको कहि दउची जो मानकर एसएमएस समय पढ़ी परनु से मानको पई हमें दुखित किंतु नाट के हमें चेष्टा करबा कहि दबा पई तबे आभास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रू मिसेस करिसेंती एवं डेडिकेट करथिले गीत टुन्ना भाईना रमेश भाई उर्मिला पांखो

रोहित मेहर बुदापाली विजयपुर बरगड़ मध्ये मेसेज करथिले मंजुबाला पात्र भक्ति प्रसाद असरला पिचुड़ी पिचकुड़ी खोरधारु मेसेज करथिले एवं ता सहित आमुकु आज मेसेज करथिले सुकांत माझी विश्वई मयूरभंजरु आमुकु मेसेज करथिले सुरक्षा सहायक सहयोग भवन सेक्टर 13 रु डंबरुधर आमुकु मेसेज करथिले समीर खटुआ नरसिंहपुर केन्द्रापड़ारु मध्य एवं आमुकु मेसेज करथिले सुधा सडंगीरु उर्मिला बेहरा प्रशांत कुमार बेहरा लिप्पू लिट्टू नाती गुकुला एवं अनेक ना आउरी बाकी रही जाउछि साथी कोन करबा समयर बाबंदी आमे पढ़ी पारुनु वासुदेव त्रिलोचन कालिया बड़िया कुनी निनी लिटुनी बापा बो राय सुंगड़ा सालेपुर भी मेसेज करथिले समस्त साथी बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने मेसेज करथिले निश्चित भाव में आपंकर फरमाइश पूरण कर समय बाबंदी में आज साथी एति रेनबो एसएमएस को ये शेष करने को पड़ा समय देलानी सारा।

0: XDR TB हुए जेउतरे अधिकांश टीबी औषध आउ काम करे नाही तेनो टीबी औषध आद्धो अधारु बंद करबा उचित नहे खाली सेते कि नहे एतिरे चिकित्सा अधिका 9 मासरु 18 मास करबा को पड़े ओ भलो हबाटा मध्य कष्टकर होई पड़े तबे व्यस्त होनी नियमित चिकित्सा रे रहिले भलो हेबा संभावना अधिक
1: आज्ञा एथरो सबु मानी चलिबु मो स्वामी को भलो करि दियंतु
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी अपनी हमेशा की तरह आरजे रश्मि, यानी कि रॉकिंग रश्मि।

जी हाँ बिल्कुल, ऐथे आ जाइए, इधर उधर जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा रुझान अपना हमारे तरफ भी ले आइए. जी, बहुत सारी खबरें लेकर, बहुत सी बॉलीवुड की ताजा अपडेट्स लेकर मैं पहुंच गई हूँ आपके पास. प्रोग्राम है बॉलीवुड रील्स हमेशा की तरह 11 बज के 5 मिनट से 12 बजे तक हम रहते हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में, और लेकर आते हैं बहुत सारी चटपटी खबरें भी और हर तरह की न्यूज कोशिश करते हैं हम आपको इस एक घंटे में देने की जो बिल्कुल ताजा ताजा होती हैं. साथ में हम मनाते हैं किसी सेलिब्रिटी का बर्थडे और होता है आपके लिए एक सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज. तो देखिए ना, कितने सारे अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हम लेकर आते हैं. तो सबसे पहले जो सेगमेंट है वो है हमारा अपडेट्स का. तो देखिए ना, सबसे पहले अभी जो साल का जो पहला महीना था उसमें एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने झंडे गाड़ दिए थे सब तरफ हमारे सनी देओल साहब के, है ना. हालांकि उस वक्त धुरंधर का भी जादू छाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर टू ने अपनी जगह काफी हद तक बना ली थी और जनवरी में ही काफी अच्छा उसने बिजनेस भी किया था. और इसी फिल्म के 81 दिन के बाद बॉर्डर 3 पर भी एक अपडेट आ गई है. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बॉर्डर 3 पर एक अपडेट आ गई है. कहा यह जा रहा है कि इस बार इस फिल्म को और भी ज्यादा वास्ट तरीके से बनाया जाएगा और सनी देओल का किरदार और भी ज्यादा दमदार नजर आएगा. भाई ऑब्वियस सी बात है ना, सनी देओल इस फ्रेंचाइजी का अहम हिस्सा, अहम चेहरा माना जाते हैं. और कहा यह भी जा रहा है कि जो 2027 का प्रोजेक्ट होगा ना, वो काफी बड़ा होगा और इसमें इनका जो किरदार है, देशभक्त वाला किरदार, वो और भी बड़ा बनाया जाएगा. फिल्म की शूटिंग की यदि बात करें तो देश के ही अलग अलग लोकेशन पर होगी. लेकिन साथ साथ ना एक खबर ये भी है कि फिल्म मेकर जो निधि दत्ता है वो एयरफोर्स पर भी एक फिल्म बना रहे हैं, है ना. यानी कि वीर वायुसेना पर भी उनकी एक फिल्म बन रही है जिसका मेन थीम जो है वीर वायुसेना है. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉर्डर 2 की ही वो बात है, बॉर्डर 3 की ही वो बात है. भाई ये बात तभी पता चलेगी जब इस फिल्म से जुड़ी और अगली अपडेट हम तक आएगी. लेकिन फिलहाल ये सच है कि बॉर्डर 3 की प्लानिंग शुरू हो गई है और सनी देओल अपनी बाकी की फिल्मों के साथ साथ थोड़ा सा इसको लेकर भी दोबारा से चर्चा में आ गए हैं. फिलहाल उनकी जो चर्चा चल रही है रामायण में उनके किरदार की है, साथ में लाहौर 1947 की है और है गबरू से. फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ बॉर्डर 2 से ये गीत, किसकी आवाज में, ये है हमारे सुखविंदर सिंह की आवाज में.

0: सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आपके साथ हूं मैं आरजे रश्मि.

वेल आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और अब एक जो खास खबर आपके लिए वो ये है कि भाई सलमान खान की जो नेक्स्ट फिल्म है मातृभूमि एक के बाद कई बार उसकी रिलीज डेट फाइनल होती है लेकिन उसके बावजूद फिर थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दी जाती है ना, तो कुल मिलाकर उसकी रिलीज डेट पर अभी भी कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म भी ऐलान कर दिया है उसका कि हाँ उनकी अगली फिल्म भी आने वाली है या तैयार होनी स्टार्ट हो गई है, उन्होंने सोच लिया है। और खास बात यह है कि इस फिल्म का डायरेक्शन वामशी पेडियल्ली कर रहे हैं और दिल राजू इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब खबर यह है कि इस जो ये दूसरी वाली फिल्म है इसमें राजपाल यादव की एंट्री हो गई है और आपको पता है ना बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं सलमान खान की जिसमें इनके साथ में राजपाल यादव ने काम किया है। और आपको यदि याद होगा ना एक फिल्म मुझे बहुत याद आ रही है और इसमें जो इनका कैरेक्टर था ना इनके मामू बने थे आई थिंक वो और या मामू पंडित जी टाइप से बने थे और उसमें इनकी शादी कराने के लिए कुछ इनको बताने के लिए कि आप ऐसे करो ऐसे करो, एक बड़ा ही जबरदस्त कॉमिक सा कैरेक्टर था राजपाल यादव का। तो बस वही फिल्म मुझे याद आ रही है और उसी का एक गाना मैं सोच रही हूँ आपको सुनवा दूं। किसकी आवाज है? सोनू निगम की आवाज है और गाना है सलमान खान पर प्रेशराइज किया हुआ।

जी हाँ, आ जाइए आप भी, जहाँ भी हैं, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जो भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने कान जो है ना वो हमारी तरफ जरूर लगा लीजिए, ताकि साथ साथ आप प्रोग्राम एंजॉय भी कर सकें और बॉलीवुड सरताज के क्वेश्चन में भाग भी ले सकें। भाई पिछले दिनों, अभी बीते ही दिनों, हमने हमारी वेटरन सिंगर आशा भोसले जी को खोया है, तो मैंने सोचा आज का जो सवाल है क्यों ना उन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया जाए। भाई इतनी जल्दी हम उन्हें अपने पास से जाने तो नहीं दे सकते, है ना, ऐसा ही है ना। ऑब्वियसली बातें सभी जानते हैं, आशा भोसले ने 11,000 से भी ज्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में, 20 से भी ज्यादा

भाषाओं में गाए हैं और उनकी तूती विदेशों में भी बोलती है। और ये भी सच है कि आशा ताई ने ना 79 की उम्र में, जी हाँ 79 साल की उम्र में, 79 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया। अब आप कहेंगे ऐसा भी है क्या? जी हाँ बिल्कुल ऐसा है। और यदि आप भी मेरी तरह ये बात जानते हैं तो आपको आज के बॉलीवुड क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें आशा भोसले जी ने काम किया है और क्या रोल उन्होंने निभाया था। जल्दी से लिखकर भेज दीजिए उस फिल्म का नाम अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ। यदि आपका सवाल सही होगा तो हम आपका नाम भी अनाउंस करेंगे और साथ साथ जिन जिन लोगों ने सही सही नाम बताया होगा ना फिल्म का, उनका नाम हम अनाउंस करेंगे और सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गाना आशा भोसले जी की आवाज में। फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ एक और बहुत जबरदस्त ट्रैक और इस बार आवाज है हिमेश रेशमिया की। आपको आंसर भेजना कहाँ पर है? 9868107070 है हमारा हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी से लिखकर भेज दीजिए आशा भोसले ने वो कौन सी फिल्म में एज एन एक्ट्रेस काम किया है और उनका रोल क्या था। 9868107070 पर

कितने ही बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की भूत बंगला. लेकिन रिलीज से जस्ट पहले अक्षय कुमार की इस फिल्म के साथ सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाने की शुरुआत कर दी है. भाई शुरुआत क्या कर दी है, चला दी है, और इसकी वजह से फिल्म हो गई है पूरे 10 मिनट कम. तो अब आपको जो ये फिल्म नजर आएगी ना, इसमें 10 मिनट कम की नजर आएगी. लेकिन ये भी सच है कि फिल्म में जो भी कुछ ऐसा कंटेंट था जो देखने लायक नहीं था, जो सुनने लायक नहीं था ना, उसे सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है. तो मुझे लगता है वैसे भी जब भी फिल्म बने ना, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे भी देखते हैं, फैमिली में सब लोग साथ में बैठकर देखते हैं, तो एक प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए एक कुछ भी. तो मुझे लगता है वैसे बजाय कि सेंसर बोर्ड को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़े, हमारे यदि मेकर्स इस बात का ख्याल रखें कि भाई कुछ भी ऐसा ना डालें जो लोग एक साथ बैठकर अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें, तो फिल्में नहीं होना चाहिए, है ना. खैर जो भी है, सेंसर बोर्ड ने अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, और उन्होंने वो आपत्तिजनक दृश्य या जो शब्द हैं वो हटा दिए हैं, और अब फिल्म फाइनली 17 अप्रैल को रिलीज होगी. यदि हम फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में वामिका गब्बी है, तब्बू है, परेश रावल है, और साथ में राजपाल यादव है. कुल मिलाकर ये वो टीम है प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जो फिल्म में जान डाल देती है. पहले भी बहुत सारी हिट फिल्में इन्होंने दी हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में नया क्या होगा ये पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज होगी. फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में आपसे एक बार फिर से मैं पूछ रही हूँ वो सवाल जो है बहुत ही आसान. यदि आप भी आशा भोसले जी के बहुत बड़े फैन हैं और आपको पता है कि उन्होंने एज ए सिंगर तो बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए हैं, लेकिन एज एन एक्ट्रेस भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया है, है ना. आपको बताना है वो कौन सी फिल्म है और उसमें उनका किरदार क्या था. लिखकर भेज दीजिए अपने नाम, अपने फोन नंबर के साथ, अपने शहर के नाम के साथ 9868107070 पर, यानि कि 9868107070 पर.

जी हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ आपके साथ कौन मैं हूँ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। और आज हमने आपसे पूछा है बहुत ही छोटा सा सवाल, और वो ये है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें आशा भोसले जी ने एज एन एक्ट्रेस काम किया है। आपको बताना है उस फिल्म का नाम और साथ में उसमें उनका क्या किरदार था, वो भी आपको बताना है। और अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज देना है 9868107070 पर। और अब बात उस फिल्म की जिसने इस बार इतिहास रच दिया है। जी हाँ, 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट और 19 मार्च 2026 को रिलीज हुआ उसका सेकेंड पार्ट, यानी कि आदित्य धर निर्देशित धुंधर फ्रेंचाइजी ने फाइनली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। ग्लोबल लेवल पर यदि बात करें तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये पहली एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि इन दोनों ही भागों ने, यानी कि धुरंधर के दोनों भागों ने इतना शानदार परफॉर्म कर दिया है कि इनकी ग्लोबल कमाई ना 3000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, यानी कि ये आंकड़ा पहुंच गया है 3000 करोड़ से भी ऊपर।

और इसके साथ धुरंधर फ्रेंचाइजी ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है, फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है ना. तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह के जो है ना सितारे पूरी तरह से बुलंदी पर हैं, और साथ साथ आदित्य धर ने जो नाम कमाया है, जो काम करके दिखाया है, जो फिल्म तैयार करके दी है, वो वाकई में काबिले तारीफ है. हम सुनाएंगे आपको एक और ट्रैक, लेकिन ऑब्वियसली बात है धुरंधर से तो नहीं सुना रही हूँ, लेकिन ये भी अपने आप में काफी अच्छी फिल्म थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उतनी तो नहीं चली, लेकिन हाँ लोगों को काफी पसंद आई. और वो सुना दें, चलिए सुनाते हैं आपको ये ट्रैक और वापस आते हैं एक बार फिर से बॉलीवुड ट्रेल्स में.

जहाँ एक गीत था फिल्म साहो से, जिसमें लीड रोल में थे श्रद्धा कपूर और प्रभास, लेकिन नेगेटिव रोल में थी कौन? ये थी मंदिरा बेदी, जिन्होंने इस फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया था और लोगों के बीच एक बार फिर से अपनी पहचान बनाई थी। हालांकि यदि हम इनकी बात कर रहे हैं, इसलिए कि आज है इनका बर्थडे और 1972 में ये बॉर्न हुई थी, आज यानी 15 अप्रैल के दिन। इन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआत की टेलीविजन इंडस्ट्री से और डेब्यू किया सीरियल शांति के साथ। उसके बाद नजर आई डीडीएलजी यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक अच्छा कैरेक्टर था उनका, उसमें एक भोली भाली मासूम सी लड़की का उनका किरदार था। काफी अच्छी उन्होंने उसके जरिए अपनी पहचान बनाई, लेकिन उसके बावजूद बाद ये एक टेलीविजन होस्ट की तरह और क्या कह सकते हैं क्रिकेट कमेंटेटर की तरह हमारे सामने आई। बहुत सारे रोल इन्होंने अलग अलग तरह से जिंदगी में निभाए और आज हम उनको दे रहे हैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ साथ हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसका इंतजार सभी को है, जी अल्लू अर्जुन की राका। और इस बार खबर ये है कि अल्लू अर्जुन की राका में नजर आ सकते हैं शाहरुख खान। अब आप कहेंगे भाई पीछे तो आपने बताया था कि जो रजनीकांत की जेलर 2 है उसमें कैमियो से इनकार कर दिया है इन्होंने। जी हाँ, शाहरुख खान ने इनकार कर दिया था, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी।

0: कि वो चाहते थे कि किंग से पहले वो फिल्म रिलीज ना हो ना, लेकिन अल्लू अर्जुन की राका के लिए उन्होंने हाँ कर दी है और यही कहा है कि भाई मैंने बिल्कुल हामी कर दी है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस फिल्म में कैमियो करने के लिए। तो अब देखना ये है कि क्या होगा उनका रोल इटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म राका में, क्या किस तरह से वो नजर आएंगे कैमियो करते हुए शाहरुख खान। फिलहाल मैं आपको सुना रही हूँ अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का ट्रैक श्रेया घोषाल की खूबसूरत मेलोडियस आवाज में।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक।

जी हाँ, और अब वक्त है उस सवाल का सही जवाब देने का जो हमने आपसे पूछा था। और अब आप कहेंगे आज आप जवाब क्यों देंगी? भाई मैं जवाब इसलिए दूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है और ये भी बताया है कि वो यहाँ

पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आशा भोसले जी का कोई भी फैन निराश हो और मैं सभी का नाम पढ़ना चाहती हूं उनके सही जवाब के साथ। इसीलिए आज जवाब देने वाली हूं मैं, और मैं आज फोन पर किसी से बात नहीं करूं, यार मैं सबके नाम पढ़ूंगी। तो सबसे पहले सही जवाब ये है कि ये फिल्म थी मराठी फिल्म माई, जिसमें आशा भोसले जी ने एक माँ का किरदार निभाया था। इस फिल्म में वो एक ऐसी माँ बनी थी जो अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित है और चीजों को याद नहीं रख पाती, और उनका बेटा जिसका रोल निभाया था राम कपूर ने, वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पद्मनी कोल्हापुरी जो उनकी बेटी बनी थी उनका ध्यान रखती है। तो बस यही जो फिल्म थी जिंदगी के ताने बाने और बुजुर्गों के प्रति बच्चों के बदलते रवैये को दिखाती हुई, इस फिल्म में आशा जी ने रोल निभाया था माँ का। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब आया था। सही जवाब आया था सुरेश बदन का, लुधियाना से, बिल्कुल हमारे पास सही जवाब था। इसके अलावा सलीम मलिक मेरठ यूपी से लिख रहे थे, तरुण कोहली ने लिखा था सूरजमल रोड मेरठ से, विजय कुमार कामत शालीमार बाग से था इनका सही जवाब। इसके अलावा दिव्याना पराशर मेरठ से, और ये कौन है, ये है धर्म भाटिया जी रोहतक से लिख रही है, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा तरुण भारद्वाज ने हल्द्वानी उत्तराखंड से, दानिश ने खतौली से लिखा है, और रंजीत ने मुकुंदपुर दिल्ली से लिखा है, सही जवाब इनका था कांट से मोहम्मद फुरकान। कंचन ने लिखा है सोनिया विहार से, पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से, विनीत कुमार बदायूं से, श्वेता कपूर ने लिखा है कहां से इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, और इसके अलावा भी काफी मैसेजेस आए हैं। ये है मोहम्मद फुरकान ग्राम सियाल से, इनका भी बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा उमेश कुमार ख्याला से, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। इसके अलावा है प्रवीण चौहान खरगोन एमपी से, मुजफ्फरनगर से जाहिद अहमद लिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है इनका। बसंत तोमर ने लिखा है मेरठ से, और इसके अलावा ये है सोनपुर जिला सारण बिहार से अंकित कुमार, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हम तक पहुंचाया है। इसके अलावा ये है कौन लिखने वाली है, वंशिका संगल काकुल संगल राजकुमार एंक्लेव मेरठ से, और इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि गीत बहुत प्यारे आपने चलाए, साथ में आज इनके मम्मी पापा अनुज संगल जी और ऋचा संगल जी की एनिवर्सरी है, उन्हें विश कर रही हैं, तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी विशेस। इसके अलावा सिमरन मुखी अनिता मुखी और सुदर्शन मुखी का मैसेज आया है शांति नगर सोनीपत से, ऋषु कटारिया पवन कटारिया गिदर बहा पंजाब से, और आप सभी का बिल्कुल सही जवाब था फिल्म थी माई, और जिसमें इन्होंने निभाया था माँ का किरदार। तो आप सभी के लिए खास तौर पे आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत ट्रैक, और देखिए ना कितनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने कितनी एनर्जी के साथ ये गीत गाया है।